गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छोर प्राप्त होती, कितने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

तो जागता है। गुरु सूरज के वाफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद।

राग कल्याण भुपाली दियां सुरावलियां विच सर्व दुखां नूं निवारण वाले पार ब्रह्म परमेश्वर प्रति इउं जाचना कर रहे ने।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुच्ची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलह भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

नौवें पातशाह साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी राग जैजावंती दे अंतर्गत विषय विकारां विच ग्रसे नाम विहूणे मन दी दशा दा बयान कर रहे हन। रे मन कौन गत हुए है तेरी, एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनह कान, बिखियन स्यो अति लुभान मत नाहिन फेरी।

महापुरख पारस हुंदा है ते पारस दे नाल लोहा शो जाए ते फिर सोना हो जाता है। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। भगत रविदास जी ने जिथे बह के जोड़े ठोकरे सन जुतियां ठोकरे सन ओ पत्थर चुकिया ते कहन लगे आ इथों लै लै जितने कड़े चाहिए नहीं पाई। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। हैरान हो गए क्योंकि त्याग दी मूरत सन भगत रविदास जी और संत होंदे भी त्याग दी मूरत हन। महापुरखां दी कमाई उदों ही सिमरन उथे ही रुक जांदा है जदों ओ बखेड़ियां विच पै जांदे हन, माया दे लोर विच लुर पैंदे हन। महापुरख त्याग दी मूरत होंदे हन। सब तों पहला संसार नूं संसार दे मोह नूं त्यागना, फिर माया दे मोह नूं त्यागना, उस तो बाद फिर प्रतिष्ठा उस्तत निंदा दा त्याग करके ए समुंदर तप के अगे फिर परमेश्वर दा डेरा है।

सारे ब्राह्मणा सदवाया ते भगत रविदास जी नू भी बेनती की जाके महाराज तुसी नहीं आओगे उतने तक ब्रह्म भोज आरंभ नहीं होवेगा, तुसी आना है।

अंतरूप मंगल सब जाके थप थोप सुनिए घर पाके राज में राज जोग में जोगी तब में तीसर दस्त में भोगी त्याय त्याय भक्त है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने।

जेवा एक पार ना लेही। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। शेष रसन सारस सी बुद्ध तदप न उपमा बरनत सुध। या मैं रंच न मिथ्या पाखी। मैं झूठ नहीं कह रहा, एक जरा पर भी, एक छिन पर भी, इदे विच मैं झूठ नहीं कह रहा, सौंख आके कहना। या मैं

ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਵਰਤ ਹੋਵੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਲਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਉਸ ਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣਾ, ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਰਾਗ ਦਵੇਸ਼ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਣੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ, ਫੇਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋਗੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮਾ ਤਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਹੁ ਕਹਾਵੇ, ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਹ ਸੋ, ਸਦਾ ਨੰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ, ਤੈਸਾ ਸੁਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਬਰ ਤੈਸੀ ਕਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਜਾਨ, ਜੋ ਬਤਾਏ ਸਾਈ ਯੁਗ ਨਾਨਕ ਉਪਰ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮਿਲ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰਿਆ, ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਰਹਿ ਤੋਂ, ਰਜੋ ਸਤੋ ਤਮੋ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਤੋਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਧਿਆਸ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਮਾਨ, ਪੰਚ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਚ ਅੰਤਾ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸੱਚੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਗਮੀ ਵਿਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਗਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਂਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੇ ਹੋਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੱਛੀ ਜਨ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੀਨਾ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸਾਖਤ ਮਰੇ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹਲਬਨ ਮਰੀਏ ਰੇਮਨ ਅਜਿਵਰਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਆ ਗਈ, ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੀਜ ਰਾਤ ਅਵਧੂਤ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਧਨ ਬੀਜ ਗਿਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਆਪੇ ਪਾਓ ਆਪੇ ਪਵਨਾ ਜਾਵੇ ਕਸਮ ਤਰਾ ਕੇ ਕਵਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੱਤਾ ਜਰਕੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੁਣਾਏ, ਕਾਂਕੋ ਜਰੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨਟ ਵਟ ਖੇਲੇ ਸਾਧ ਭਾਂ ਕੋ ਕਬੀਰ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਏਗਾ ਕਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਖ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਤਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਤੇਰੇ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਜਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸਾ ਉਹ ਵੀ ਜਲ ਗਿਆ, ਲੜਕੀ ਜਲ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਤੇਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਲੱਤ ਜਲ ਗਈ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਏ, ਘਰ ਸਾਰਾ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਵਾਹ ਹੋ ਪਿਆ, ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਜਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਹਸਪਤਾਲ ਪਏ, ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲ ਗਈਆਂ, ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਮੰਜੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਵੀ, ਉਹ ਜਦਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ, ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾ ਜਾਵੇ ਕਹਿ ਨੱਚੋ ਟੱਪੋ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਪਕਾਓ, ਲੱਡੂ ਪਕਾਓ, ਤੇ
खुश होवो, प्रसन्न होवो, नचो टप्पो, ऐसे बात क्या है, तेरा इना नुकसान होया, क्या फिर दसूंगा। पर जब तुम खुशी में नाओ, आप भी नचे टप्पे, ऐसा समाजी सान नित नित आवे, सारी खुशियां मनाओ। ते उसने भी बड़ी खुशी मनाई। फिर कुछ समय मगरों वो स्त्री राजी होके आ गए, बाल भी राजी, कन्या भी राजी होके आ गए, दो तो पहले मर गए, जल गए से मकान भी जल गया। कुछ समय मगरों उन्हों हजारा गुना चीजा मिल गई, अगर नालों ज्यादा के बारे पै गए, मजबूरी से लग गए, लोगों लग गए, तो मैं भी कैंबर कैंबर हो गए। एक दिन पता नहीं वो फन के बीच में किया, फिर सोचियों पिया, फिर हूं लग गया, पिटन लग गया, लोगों मेरा कुछ नहीं रहा, तुसी भी रोवो, जरा आवे तुसी भी रोवो, कंधा च सिर मारे, मेरा कख नहीं रहा, मेरा तो कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ गया, आलोक भी लोक भी गया, तुसी भी रोवो। वो कहते बात क्या है, अगे तेरा सब कुछ जल गया था, तो तू गमी च खुशी मना रहा सा, हूं तेन सब कुछ मिल गया, तू गमी मना, कहना रोवो रोवो, मेरा सब कुछ लुटिया गया, लोगों में मारिया गया, बात क्या है। कहना बाद संत महात्मा आ गए, उन्होंने जाके पूछो ब्रह्म ज्ञानी की गति, ब्रह्म ज्ञानी जाना है उठे जाके उन्हें संतों पर गए, महाराज दसो की सबब है। वो कहते जो भगत है ज्ञानवान है, हूं तो परमेश्वर दुनिया से चाहिए, बाकी कोई चीज नहीं चाहती है, एक परमात्मा चाहिए रहेगा, जिस नाम के दसो ही बट राजा। कह तो कबीर सुनो तो लो ये राम नाम बन मुक्त न हो, कौन आनकी तत्व विचारा बिना भजन नहीं छुटकारा। जेरा संसार तो पार होना चाहता, जन्म मरण कटना चाहता, चुरासे चो निकलना चाहता, हूं तो परमात्मा चाहिए, बाकी कोई चीज नहीं चाहिए। बेबी नानकी कहने मैंने कोई चीज नहीं चाहिए, न बिसरो बलको दीजो, वेहो भैन पर कीजो कृपा कीजो। पहला वो घर में अग लग गई, पता नहीं कितना लग गया, जल गया, तो वो अद्धा परिवार हस्पताल में गया, अद्धा मर गया। उन्होंने कहने जाके दसिया संत महात्मा के पास, वो आया, वो सोची पै गया, कहना मेरी बिरती बच्चे नहीं फर्क तो नहीं पै है, क्यों दुनिया के फिर चिंता च बिरती बच्चे फर्क पैना होया, शरीर में कोई रोग हो जाए बिरती बच्चे फर्क पैना होया, कोई नुकसान हो जाए परमेश्वर भुल जाता है, क्रोध लोभ जी परमात्मा भुल जाता, वो सोचता मेरी बिरती बच्चे फर्क तो नहीं पे है, घर में अग लगने करके परिवार मरने करके बिरते च फर्क नहीं पिया है। कहना खुशी मनाओ, दुनिया का चीजा की है, लकां ही आईया, लकां ही चाहिए चले गई है, यह छल रूप है, धोखा फरेब कदे है, कदे है नहीं, सुपने मंगल झूठियां है, सुपने सहते चेत मूर्ख लाया, मेरी बिरती पूरी परमात्मा ने, खुशी मनाए, इन बड़ी खुशी मनाई, थानू कहना नचो खुशी होवो, मेरी परमात्मा के पास बिरती कायम है, बाकी चीजा मैंने की करना, जो मर गया तो सारिया छटन, ना कोई ना लिया ना कोई जाती है, बिरकी छाया से मिलावे, बिन से मन पिस्ट आवे, जो दिशे से चलन हार लपटी होते हैं, हार बठाऊ से जो लावे ने ताके हाथ ना भी ना रमो तो नरकों चला जाता, परमेश्वर धर्म मुक्ति करता। खुश होया, प्रसन्न होया, थोन भी कहना नचो टपो, आप भी नचते टपता, बिरती मेरी कायम है, फर्क नहीं पे। फिर स्त्री भी आ गई, बाल भी आ गया, राजी हो गया, होर पुत्र भी हो गया, घर भी हो गया, हजारा गुणा धन भी मिल गया, पक्के भी मिल गए, सब कुछ मिल गया, बाग बगीचे हो गए। फिर पता नहीं कोई पिछला पाप आ गया, पता नहीं अन्न मैला खा लिया, महाराज भी चित नहीं लगता, इन्हें लुटिया गया, मारे आ गया, मेरा कुछ भी नहीं रहा, लोग खत्म हो गया, क्यों नाम ते बिना सारे काम कमे है, अगर कार तेरे कितना काम मेरे साथ संग पैठे होना, सकल परम डाल दे गोविंद को नाम ले, अंतवार संग तेरे यही एक जागर। इस संसार के बीच में जगत भी दुनिया च मनुखा दे फैला देने वाली चीज बिना नाम ते कोई है ही कोई नहीं है, परमेश्वर पाया सबको पाया, परमेश्वर ने पाया कुछ नहीं पाया, बाकी की चली कीमत सिफर है, सिफर है, परमेश्वर से भुलिया व्यापन सब रोग विशेष सदा को मारिया गया, लोग को लुटिया गया, मेरा कुछ नहीं रहा, बिरती परमात्मा के पास नहीं लगती, कोई पहले पाप आ गए या कोई पैर मेला खा लिया, कबीर साहब मांग तो फिर चेतन नहीं लगता, भगतान तो परमेश्वर चाहिए, भगतान तो परमात्मा चाहिए, हूं तलो मछी लगे हो मछी जल मंग गो बच्चे मंग, जिन्ना चेत तो ना लगे रोंदे पिटते रहना, मिन्नत करते रहना है, क्यों नहीं जे गडवंका पाई दो कोटर तेवर खाई, पांच पच्चीस मोह मधुमस आटी पर मनवाया,
जन गरीब को जोर न पहुंचे कहां करो रगराया, काम कुवारी दुख सुख दरवानी, पाप फोन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबट दुंदर, मनोवासी राजा, स्वाद सुना टोप ममता को, कहो दो कुमार चिढ़ाई तृष्णा तीर है कटी एवं कर लिया जाए। महाराज को ऐसा कहने मेरा मन परमेश्वर के पास नहीं लगता, मन जिते आने जाता है, मुंडा मुर्गी नहीं खाता, जंगल में जाके बेनतियां करता है, मैं घर नहीं जाना, खाना पीना कुछ नहीं आएगा, यह तो वस्तु संसार के बीच में पाने वाली है। अंतर्यामी परमात्मा ने दया आई, महाराज ने कहा कबीर तेन दसा तेरा चित कि परमेश्वर के पास लगेगा, प्रेम पलीता सुरत हवाए गोला ध्यान चलाया, ब्रह्म वगन सहजे पर जाले एका चोट समझाया, ससन तोखला लड़ने लगा तोरे दो दरवाजा, साध संगत गुरु की कृपा ते पकड़े गाट को राजा, भागवत सागर सिमन की कटी काल पर पासी दास कबीर छड़ी युक्ति डाल देते। इस तरह वो भी भगत ने भी युक्ति डाल देते, मन परमात्मा के पास लड़ने जुगते गए है, महाराज जपे जाओ जपे जाओ जपे जाओ जपी जाओ हटो ही ना, महाराज का पाठ सुने जाओ सुने जाओ सुने जाओ हटो ही ना, कीर्तन सुने जाओ सुने जाओ कदे ना कदे मन लग जा सी, केसो केसो कूकिए ना सोइए असा रात दिवस के कूत कूने सुनता सुने पुकार, सो श्री गुरु नानक देव महाराज गोरख से सिद्धा ने सही कहा कि सचारा हो असि महाराज की दरगाह कि सचे हुई है, महाराज कहते कूरों टुटे पर झूठा संसार में उदो लाओ, क्यों कूरों टुटे पर झूठा संसार में उदो कि लथे हुक्म जाए चलना नानक लिखे ना उस भगत मांगो, उस भगत मांगो उन्होंने तो केवल परमात्मा चाहिए, केवल संसार चो निकलना चाहिए, केवल मुक्ति चाहिए, बाकी दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। कबीर साहब कहता परमेश्वर तेरे दरबार च लखा ही ब्रह्मा लखा ही विष्णु लखा ही शिव जी पता नहीं किन्ने है, जो जाचो तो केवल ना मैं तो एक अपना नाम दे कहो नानक के तत्व विचार बिना भजन नहीं छुटकारा, जे तुसी उस भगत मंगल गमी विच भी खुशी मनाओगे, श्री गुरु नानक देव कहते तुसी महाराज की दरगाह विच सचारा हो जाओगे, ये संसार मगरों लै जाऊंगा तुसी मुक्त हो जाओगे। एक सेठ है हर वेले संत महात्मा की संगत करता हट्टी करता है, संत महात्मा की संगत करता कदे पाठ करता कदे सुखमनी साहब कदे जपजी साहब कदे रहरास कदे ग्रंथ संत महात्माओं तो उन्होंने परमेश्वर दल करता है, उसका भी मन इदा दया हर शोक जानके नहीं पैरे में समान, कौ नानक सुन रहे उन्हें मुख्यताएं त्यान, पैकाओं को देत न पैमान त्यान, कौ नानक सुन रहे मन ज्ञानीताएं बखान, उसका मन भी इदा दया। एक बार सेठ लखों करोड़ों रुपये का मालिक है, संत महात्मा ने वचन करता परमेश्वर के पास महाराज के पास वचन करता है, तो वो बोली आई कह लगी सेठ जी जिरा 9 लख हार तुम अपनी स्त्री वास्ते बनाया सन चोरी हो गया। अच्छा सोची पै गया, अच्छा कल्याण हो गए दासी जा, फिर संत महात्मा ने वचन ला पाया करना फिर नहीं बनाया, फिर संत महात्मा ने वचन परमेश्वर के पास करता रहा, ते कई चिर हो गया तो फिर गोली आई सेठ 9 लख मिल गया, फिर जरा सोची पै गया, फिर कहते अच्छा दासी जा कल्याण, फिर संत महात्मा ने वचन कर लिया, संत महा कहने बात क्या है, गोली ने आके थानू आख्या सी ते 9 लख हार गुम हो गया, तुसी कोई हद कछो नहीं किया, गए भी नहीं सानू छड़ के परमात्मा दी गल्लां कर दे रहे हैं, जरा कछो कीते हैं, फिर हूं गोली ने आके आखिया सेठ साहब 9 लख हार मिल गया तो जरा चुप हो फिर लापा गल्लां कर, तुसी शादी गमी ते फिक्र क्यों।

ये हालत कैसे, शहर प्यारे किते, पंजे प्यारे किते, माता किते, पिता किते, अनंतपुर साहब की सुमगरी किते, नीला किते, प्रसादी हाथी किते, रोने लग गया दिशा वे के बेस कैसा बना है। महाराज जी के पंडित जी इतने लकीर कडो धरती थे, हम लकीर कडिया मटेरे कहती तेन लकीर कडने की खुशी हुई है कि नहीं मटेरे क्यों भी नहीं, इतने सानू संसार है, इदा ही सानू संसार है। हर शोक जान के नहीं बैरे में समान, कौन नानक सुन रहे मन मुक्ता है तान, उस पर निंदर नाए जे कंचन लो समान, कौन नानक सुन रहे मन मुक्ता है तान। कि सजा रंग हुई है कूदन टुटे पाल, झूठा संसार मगरों कि लते, कि कूदन टुटे पाल कि लते, हुक्म जाए चलना नानक लिखिया नाल, तेरा किया मीठा लाके नाम पदार्थ नानक मंगे, तेरा किया मीठा एक हो जाए रहे है। मासी वाले दिशाओं बिच भी शब्द पढ़ते रहे, मित्र प्यारे हाल मरीजा का कहना, तुद बिन रोक जाना लिया बिन नाक निवास आते रहना, सूर्य सुराही कंजर प्याला पिंग कसाइया का सहना जागते सानू सत्र चंगा पाठ। वो सानू सब किस सिखाते इदा के रहो, तां गुरु नानक साहब का बचन मनिया होगा मनिया जाऊगा, हुक्म जाए चलना नानक लिखा ना इदा रहो। नवे महाराज पिंजरिया च है, बह नहीं सकते, सौ नहीं सकते, सह लेंगे तो कीले है अनपानी ने, वो शब्द पढ़ते हैं जो उन्होंने दुख में दुख में माने सुख सने, पहले जाके खेचन माटी माने, नैन ने उसका जाके लोभ मोह माना, हर एक सब ते रहे अगर ना है मान, ता ही माता महाराज की दरगाह के बीच में सच्चे होवे ये समय हुक्म मनागे, ता ही संसार मगन रखेगा, ये काम करो लोभ मोह का ये के लिए तो असं रहत होवे, मन जितांगे, मन मर जाए तो फिर असं मुक्त होवे, जीवित मरे मरे पूंजी हुई ऐसे सुन समाया। इधर पंजे महाराज चंद अपने मियां मेर नुआ, मियां मेर सानू अमृतसर रेशम के गदेले जड़े सके ना, इतना तीन तवियां रेशम के गदेले जापते इको जापते दोनों, उत्थे सिख चार करते सन इतने रेत पैनी सानू दोनों इको ही, वही सुपना ये भी सुपना, वही झूठा ये सुपना है, हुक्म जाए चलना नानक लिखिया नाल, ना अग्न ठंडी कर दे महाराज, ना अकाल पुरख नू कहंदे साडे वास्ते सहायता कर, ना अपनी शक्ति विखांदे, जिहड़े दुश्मन ने उन्हां नाल क्रोध नहीं करते है, उन्हां दा ही पल्ला सोचते है, उन्हां दा ही पल्ला सोचते है, सबर ते शुक्र। ये गुरु नानक साहब महाराज दी पंक्ति हैगी, हुक्म जाए चलना नानक लिखिया नाल, जो तुद भावे साई भली कर तू सदा सलामत निरंकार, जो कुछ करना कसो कर। नवे महाराज भी माता नानक ने चिट्ठी लिखते है अंत वेले, चिंता तंकी कीजिए जो अनुमानी हो, यह मार्ग संसार को नानक थिर निकले, चिंता नहीं करनी चाहिए, अकाल पुरख जो को कर रहा चंगा ही कर रहा है, उसके विच दखल नहीं देना चाहिए, जो कुछ करना सौखा है, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता तंकी कीजिए जो अनुमानी हो, यह मार्ग संसार को नानक थिर निकले, चिंता करूंगे तो परमेश्वर भूल जाएगा, दुखा सुखा बच एक या ना रहोंगे तो परमात्मा भुल जाएगा, मतलब तो परमात्मा चेते करने के फार्मूले महाराज दसते है, फिर महाराज जिदा चेता रहे वो असि काम करना है, असि वो काम करना जिस करके सानू परमेश्वर से दूर न चली जाइए, परमेश्वर के नजदीक जाइए, वाले मरदान मांगो एक दो मंत्र एक दो बाट हमको साथ गन को खाट, यहाँ मतलब यह है वो काम करना जेरे करके साडा प्रेम परमात्मा के पास बधे, वो काम नहीं करना जिस करके अस दूर चले जाइए। कर्मी आप अपने के नेरे के दूर, जिनी नाम ते आया गैम सकत काल, नानक ते मुल कहती छुट्टी नाल। इस कारण से श्री गुरु नानक देव गोरख ते सिद्धा नु कहंदे है, जिदा वो सेठ नु फिर संता महात्मा ने पूछा, तू हर शोक नहीं कीता, कहना आप की कृपा महाराज, गुरु नानक साहब की पंक्ति जारी हुक्म जाए चलना नानक लिखिया नाल, हर शोक नहीं मैनू आया है, जिस वेले नौलखार चला गया मैनु गमी नहीं आई है, मिल गया खुशी नहीं हुई है, मुक्त ए नेशा होवे तो पुरुष मुक्त होंदा, ए नेशा होवे सम दृष्टि होवे, इको ये दृष्टि होवे, तैसा सबदन तैसी समाटी, तैसा अमर तैसी भी खाटी, तैसा मान तैसा मान, तैसा रंग तैसा रजान, युग ताए साई युग नानक को पुर कही जीव मुत, श्री रामचंद्र लक्ष्मण सीता को बनवास हो गया, हुक्म हो गया बनवास, ये तिने बखरे एक कोठे च कट्ठे हुए सलाह करते निकलने दे। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहने लगे, तुम थानू तो बनवास नहीं हुआ, मैनू होया ना सीता नू होया, मैनू बनवास होया, तुम भी नाल चले चले, तुम साढ़े आखे नहीं लगे।